0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: आप सुन रहे हैं FM 94 रेडियो दिलबर सवाबी।
2: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
3: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
2: रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।
4: या हबीबी या मुहम्मद या नबी।
2: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह दिलबर FM 94 स्वाबी।

आप सुन रहे हैं दिलबर FM सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर FM 94 सवाबी। दिलबर FM

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
2: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन 94 FM।

यरा आखिर वाली द रेडियो लिसनर एचजीएच तो वाली नाराजी या कराजी नु बीखी लका सुबह तुम रुम चिलक मौजूदा हालात तो जो गोरा मनो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ मुंगसर द रेडियो कम लिसनर दिन आगा तकरीबन से 2% मुंगसर इधर द रेडियो लिसनर रवान दी नोर तकरीबन से 98% खाले जिदन औरत लबाग गैब दीजिए यो खबर तो बेलम को मोरदा में मोरजिम यो सर तो गुजस्ता सुडीर शुक्रिया मदा को मोहता सुगोरे बाजे बाजे खाले दिसम छते गोरे स्वीटी दा जमाय खबर और जी जम द रेडियो पर द लिसनर्स के बिलखुसूस गोरे दिस डियर जत खाले छते गोरे हाले दिल लगा तुम रत तवेले शम जी द रेडियो जम कम लिसनर द दिस लिसनर छते दागी जद लिसनर खबर को मोरजो दागी द

यूसल ब्यांत तामिल वाड़ा मां 0333 75 75 672 बदी नंबर बहता सो जमा व्हाट्सएप दे बदी नंबर बहता सो माता व्हाट्सएप रावली गई यानी 0333 75 75 672 दी नंबर बहता सो माता खपल व्हाट्सएप रा लेगली शी उद व्हाट्सएप दला रिता सुम तो वेली शी ची सुम द बेलाडोना कम प्रोडक्ट इस्तेमाल होई आए ता सुन मुतमईने कन मुतमईने तेरे ने दम तो जरूर आई लाइव कॉल्स मैसेजेस रीच एंड एवरीथिंग विल बी मेंशन दिस इज डॉक्टर हेदरली मामा लाइव वॉइस बराहिरा सोरी दिल्ली दल्लो ये कतले महेरो जी सास बाला के सुमरम कॉस्मेटिक जनरल मेडिकल सूट दिवे की जमुदा प्रोडक्ट्स मिलावी जान लो वक्त मजा है कोई पो जान तजुर्बे में कोई जी मुंग तजुर्बे की